0: Choice FM 90.4 MHz.
1: संगम मेडिकल क्लिनिक गोर्खामा आधुनिक उपकरण र अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी मार्फत विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण सेवा
2: क्लिनिकमा उपलब्ध सेवाहरू मुटु तथा रक्तचाप जाँच, सम्पूर्ण रक्त परीक्षण, सुगर परीक्षण, लिभर तथा किडनी कार्य सम्बन्धी परीक्षण, थाइराइड, कोलेस्ट्रोल, युरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, युरिन तथा स्टूल जाँच, साथै अन्य आवश्यक डायग्नोस्टिक

क्रिस बेकरी क्याफे गोर्खा नगरपालिका छ हरमटारी गोर्खा। फोन नम्बर 0664206658, मोबाइल नम्बर 9799704003।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: Voice of Digital Entertaining the Nation.
2: Number? लछुट्टी बधाई छ है। यसपालि नि आउँदा भाउजूको आपको मिठो तिन पानी ल्याउन चाहिँ नबिर्सिनु नि।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: जथाभावी फोहोर नफाल्न क्लिन गोर्खाको अत्यन्त जरुरी सूचना।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-20-670 मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।